0: मनपर्छ भने भगवानलाई पनि मनपर्छ।
1: सेन्ट 3-in-1 परफ्युम लाइक फ्रेग्रेन्स।
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
2: बर्जर पेंसले।

0: एनिमा रिलायंस लाइफ इन्स्योरेन्स खुले रजियो रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर माँ यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंस Coffee ready.

स्वाद जस्तै सम्बन्ध गाँस्द ज्ञान मसाला। गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप्स नेपाल्स नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियताले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नुहोला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले र जिऊ।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंस से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंस

0: रंग बहार रंग बहार
1: वज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: वज पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: वज पेन्स

0: Bunnia. Extreme energy drink.
1: होम केयर सेवा, होम केयर सेवा।
2: हेलो होम केयर, डॉक्टर नर्स केयर गिवर को सेवा आयो घर घर
1: के हजुर को घर में वृद्ध आमा

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ज पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
0: घर रंगाओ खुशी बनाओ
1: उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ज पेन्सले।

0: beer, extreme energy drink.
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्जर पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
3: घर रंगाउ खुशी बनाऊ
1: उपहार जित्ने अवसर पाऊ वर्जर पेन्स

0: तानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जियौ।
1: गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप्स नेपाल्स नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाउ र गुणस्तरीय काम, जिंदल पाइप हो यसको नाम।
2: सामाजिक सुरक्षा कोष का योगदान कर्ता लागि स्वास्थ्य उपचार पद्मश्री हस्पिटल में
3: सामाजिक सुरक्षा कोष को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत यसमा आबद्ध संपूर्ण औपचारिक क्षेत्र का योगदानकर्ता, स्वरोजगार में रहकर योगदानकर्ता र वैदेशिक रोजगार में रहकर योगदानकर्ता तथा उनका श्रीमान श्रीमती र बाल बालिकालाई पद्मश्री हस्पिटल में स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं।
2: शर्तहरू लागू हुनेछन् जसमा सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानकर्ताको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ, केवाईसी अपडेट हुनुपर्नेछ आदि।
3: थप जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइ साइन्सेस प्राली पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 01605910062 5910163।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।
1: घर होस या ऑफिस, होटल होस या रेस्टोरेंट, छिटो र भरपर्दो इंटरनेट सेवा पोखरा इंटरनेट, पोखरा को ब्रांड 25 वर्ष को विश्वास गति अपार 1 GBPS सम्म का पैकेज को बहार स्ट्रीमिंग गेमिंग काम होस् या रमाइलो जहाँ सुके जाऊ कनेक्शन में कुने गड़बड़ी छैन ढिलो पोखरा इंटरनेट सधैं तपाईको साथमा हिजो आज भोलि हामी छौ तपाईको बाटोमा छिटो भरपर्दो सुलभ र सहज पोखरा इंटरनेट तपाईको पहिलो रोजाई।

ऑयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाउ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: होम केयर सेवा, होम केयर सेवा।
2: हेलो होम केयर, डाक्टर नर्स केयर गिवर को सेवा आयो घर घर।
1: के हजुर को घर में वृद्ध आमा बुबा, बाजे बजे, दीर्घकालीन रोग बीमारी वा अपाङ्गता भएका परिवार का सदस्य लाई विशेष हेरचाह चाहिन्छ र आफ्नो पेशा व्यवसाय र बाध्यताले परिवारजनलाई पर्याप्त विशेष हेरचाह र समय दिन मिलिरहेको छैन।
2: हाम्रा दक्ष एवं अनुभवी नर्स केयर गिवर र डाक्टरहरूले घरैमा प्रदान गर्ने विविध स्वास्थ्य सेवाले सेवाग्राही र परिवारजनलाई शान्ति र निश्चिन्तता प्रदान गर्दछ।
1: हाम्रा सेवा वृद्ध बुबा आमा को नर्सिंग हेरचाह,
2: अल्पकालीन दीर्घकालीन नर्सिंग हेरचाह,
1: सुत्केरी नवजात शिशु को हेरचाह,
2: क्यान्सर सर्जरी राहतकारी हेरचाह,
1: केयरगिवर हेरचाहकर्ता घरेलु सेवा,
2: डाक्टर ल्याब सेवा,
1: औषधि डेलिभरी सेवा,
2: उपकरण बहाल सेवा, तपाईको निरन्तर साथ र सेवामा हेलो होम केयर परिवार जस्तै हेरचाहमा। हेलो होम केयर सिलेढुङ्गा पोखरा निबागल्ली र बुढी बजार, फोन 061411777, मोबाइल 98569972 77।
3: रंग बहार, रंग बहार।
4: बर्जर संगे उपहार उपहार। बम्पर मा यामाहा रेजियार।
3: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
3: बर्जर पेंट।

0: एक बाम तीन काम ठंडू बाम लुका खोकी ताऊ को दुखनी चिन मायारा ठंडू बाम
1: अब ठंडू बाम रेगुलर र अल्ट्रा बाजार मा उपलब्ध था।

0: कानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो संस्कृति चिनाउन दौड़ौ इतिहास समझौन दौड़ौ साहस जगाउन दौड़ौ प्रकृति जोगाउन दौड़ौ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन को आयोजक संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाड़ी मंच को आयोजना में
1: श्री नेपाली सेना पश्चिम कीर्तना हेडक्वार्टर विजयपुर को विशेष सहयोग में
0: पोखरा पांच कोट 50 किलोमीटर अल्ट्रा ट्रेल रेस 2083 आयोजना गरिएको छ। कास्की कोट सरांगकोट जुप्रांग कोट अर्मला कोट र कहुकोट समेट्दै दौड़ने यो दौड़ले संस्कृति को पहचान इतिहास को विरासत साहस को चुनौती र प्रकृति को संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका खेलने दौड़ का विधाहरू 50 किलोमीटर महिला तथा पुरूष दौड़ र 16 किलोमीटर महिला तथा पुरूष दौड़ मिति यही असोज 25 गते आइतबार घटस्थापना को दिन दौड़ शुरू होने स्थान पोखरा महानगरपालिका वडा नंबर 24 कास्की कोट को कास्की दरबार समापन पोखरा महानगरपालिका वडा नंबर 11 फुलबारी ब्यारेक रिपोर्टिंग समय बिहान 6 बजे दौड़ शुरू बिहान ठीक 7 बजे उत्कृष्ट धावकहरूलाई पदक प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार दौड़ पूरा गर्ने सबै धावकहरूलाई पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ। दर्ता गर्ने अन्तिम मिति यही असोज 22 गते दिउँसो 4 बजेसम्म सम्पूर्ण पोखरेली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा विशेष अनुरोध सबै धावकहरू आफ्नो घर आँगनमा आइपुग्दा कृपया आफ्नो जातीय वेशभूषा बाजा गाजा र घड़ा कलश सहित धावकहरूलाई स्वागत गरी हौसला प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध छ। सवारी चालक महानुभावहरूले धावकहरूलाई असुविधा नपरोस् भनी विशेष ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। दौड़का रूटका सम्बन्धमा कृपया पोखरा म्याराथनको आधिकारिक पेज हेर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौ। आयोजक नेपाल भूतपूर्व खेलाड़ी मंच पोखरा
1: विशेष सहयोग
0: श्री नेपाली सेना पश्चिम कीर्तना हेडक्वार्टर विजयपुर विस्तृत जानकारीका लागि फोन 061588716 98560884 वेबसाइट www.pokharamarathon.org फेसबुक आईडी पोखरा म्याराथन मेन पेज।

0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: संस्कृति चिनाउन दौड़ौ इतिहास समझौन दौड़ौ साहस जगाउन दौड़ौ प्रकृति जोगाउन दौड़ौ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन को आयोजक संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाड़ी मंच को आयोजना में
2: श्री नेपाली सेना पश्चिम प्रेतना हेडक्वार्टर विजयपुर को विशेष सहयोग में
1: पोखरा पांच कोट 50 किलोमीटर अल्ट्रा ट्रेल रेस 2083 आयोजना गरिएको छ। कास्की कोट सरांगकोट जुप्रांग कोट अर्मलाकोट र काहुकोट समेट्दै दौड़ने यो दौड़ले संस्कृति को पहचान इतिहास को विरासत साहस को चुनौती र प्रकृति को संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका खेलने दौड़ का विधाहरू 50 किलोमीटर महिला तथा पुरूष दौड़ र 16 किलोमीटर महिला तथा पुरूष दौड़ मिति यही असोज 25 गते आइतबार घटस्थापना को दिन दौड़ शुरू होने स्थान पोखरा महानगरपालिका वडा नंबर 24 कास्की कोट को कास्की दरबार समापन पोखरा महानगरपालिका वडा नंबर 11 फुलबारी ब्यारेक रिपोर्टिंग समय बिहान 6 बजे दौड़ शुरू बिहान ठीक 7 बजे उत्कृष्ट धावकहरूलाई पदक प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार दौड़ पूरा करने सबै धावकहरूलाई पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ। दर्ता करने अंतिम मिति यही असोज 22 गते दिउँसो 4 बजेसम्म सम्पूर्ण पोखरेली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा विशेष अनुरोध सबै धावकहरू आफ्नो घर आँगनमा आइपुग्दा कृपया आफ्नो जातीय वेशभूषा बाजा गाजा र घड़ा कलश सहित धावकहरूलाई स्वागत गरी हौसला प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध छ। सवारी चालक महानुभावहरूले धावकहरूलाई असुविधा नपरोस् भनी विशेष ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। दौड़का रूटका सम्बन्धमा कृपया पोखरा म्याराथनको आधिकारिक पेज हेर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौ। आयोजक नेपाल भूतपूर्व खेलाड़ी मंच पोखरा
2: विशेष सहयोग
1: श्री नेपाली सेना पश्चिम प्रेतना हेडक्वार्टर विजयपुर विस्तृत जानकारीका लागि फोन 061588716 98560884 वेबसाइट www.pokharamarathon.org फेसबुक आईडी

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंस ले घर रंगा उनुहोस्ता लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाउनु होस
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 बंदा बड़ी आकर्षक उपहार और उपनी घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंस
2: पर्यटकीय नगरी पोखरामा मेट्रो सिटी हस्पिटल प्रणाली सृजनात्मक पोखराले विभिन्न किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरूको उपचार ल्याएको जानकारी गराउँदछौ
3: हाम्रा सेवाहरू
2: हार्ट जोड्ने नसा तथा मेरुदण्ड रोग
3: जनरल सर्जरी सबै प्रकारका अपरेशन सेवा
2: मृगौला तथा मूत्र रोग युरो सर्जरी
3: पेट छाती मुटु थाइरोइड तथा मधुमेह रोग
2: न्युरो सर्जरी सेवा
3: बाल रोग
2: नाक कान तथा घाँटी रोग
3: मानसिक तथा स्नायु रोग
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग
3: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
2: नेत्र रोग
3: दाँत तथा मुख रोग
2: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधिद्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन
3: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
2: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
3: डिजिटल एक्सरे
2: सिटी स्क्यान सेवा
3: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
2: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
3: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
2: केमोथेरापी
3: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
2: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
3: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा आर सृजना चोक कास्की
2: फोन 061 572 648 572 849